0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-20-670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।

0: I just don't get you, Arav. जो तुमने आज किया है उसकी वजह से हरि आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी, फिर भी तुम इतने खुश हो?
1: सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा। मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। हमें मिलना है, तुम देखना एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे।
0: आई डोंट गेट यू मैन।
1: अपूर्वा गाड़ी रोक।
0: क्या हुआ?
1: स्टॉप द कार प्लीज।
0: व्हाट हैपेंड?
1: खुशबू,